क्रोध लोभ मोह मन लीनो निर्गुण के दतारे कर कृपा अपनो नाम दीजै नानक सद बलिहारे राग गौड़ी चेती महला पंजवाऊ एक ओंकार सतगुर प्रसाद

संत संग हर मन बसै, दुख दर्द अंधेरा ब्रह्म नसै। संत प्रसाद हर जापिए,

जन्म नाही गुण गाँव अंतर बाहर एक हो जाना गुर कह शब्द पछाणे साचे शब्द दर निशाणे शब्द मरे तिस निज कर वासा आवे ना जावे चूके वासा गुर कह शब्द कमल परगासा जो दिसे सो आसो निराशा काम क्रोध भूख प्यासा नानक बिरले मिले उदासा गौड़ी महला पहला ऐसो दास मिले सुख होई दुख विसरे पावे सच सोई दर्शन देख भई मत पूरी अड़सठ मजन चरणा धूरी रहो नेत्र संतोखे एकले उतारा देहा सूची हर सारा सच करणी अव अंतर सेवा मन तृप्ता अलख बेवा जय जय जाहो जय जय देखो तय तय सचा बिन बूझे जगृत जग काचा गुर समझावे सोजी होई गुरमुख बिरला बूझे कोई कर कृपा रखो रखवाले बिन भूखे बिन बूझे पशु बेताले गुर का आवरण ही दूजा केस को देख करो अन पूजा संत हेत प्रभु त्रिवण तारे आत्म चीने सो तत् विचारे साच हृदय सच प्रेम वास

ही कोए, ना को होवा ना को होए। जेवड़ आप तेवड़ तेरी दात, जिन दिन करके कीती रात, कसम में सारे ते कम जात। नानक नावे बाज सनादरा, गुजरी महला चौथा। हर के जन सतगुर सतपुरखा, बिनो करो गुरपास, हम कीरे किरम सतगुर शरणाई।

हमारा। जमन काल सब जगत बनायो, देव दैंत जशन उपजायो। आदंत एक अवतारा, सोई गुरु समझो हमारा। नमस्कार तसही को हमारी, सगल प्रजाजन आप सवारी। सैवगन को सैवगुण सुख दियो, सत्रण को बल मोह बद कियो। घट घट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत। चीटी ते कुंचरिया स्थूला, सपर कृपा दुष्ट कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पछन्न, घट घट के पट पट की जन। जबद करख करा कर तारा, प्रजा तत तब देहे अपारा। जब आ करख करत हो कब हूँ, तो मैं मिलत देहे तर सब हूँ। जेते बदन सठ सब तार, आप अपनी बूझ उचार। तुम सब हीते रहत निरालम,

संत नानक गुरु चरण लागे वाजे अनहतूरे मुदावणी महला पंजवां ताल विच तिन वस्तु पइयो सत संतोख विचारो अमृत नाम ठाकुर का पयो जिसका सब आधारो जे को खावै जे को पुंछै तिसका होय उधारो ए वस्त जी नह जाई नित नित राव गुरु धारो तम संसार चरण लग तरिया सब नानक ब्रह्म सारो। श्लोक महला पंजवा तेरा किता जातो नाही मैनू जो कितोई मैं निर्गुण यारे को गुण नाही आपे तरस पयोई तरस पया मेह रामत होई सतगुरु सज्जन मिलिया।

करते तोट ना आवे काई राम, खात खर्चत बिलशत सुख पाया, करते की दात सवाई राम। दात सवाई निखुट ना जाई, अंतर जामी पाया, कोट बिगन सगले उठ नाठे, दुख ना नेड़ आया। सांत सहज आनंद

निज घर वासा होए बेशुमार अथाह अगणत अतुल ज्यों बुलाव हो त्यों नानक दास बुले सतना

फिर करते हैं भी जिस तरह सानू दुनियावी तौर पर पता है भी ये स्त्री है तो पुरख है जेंडर की जो असी गल करने हैं मेल फीमेल का सानू पता है तो आम तौर पर मेल तो फीमेल का संबंध बनता जीवन साथी का संबंध तो सारे ही अपनी जगह पर चंगे ने पर तुसी कदी विचारिया होवे गुरमुखो भी सानू पिता चुनन की कोई खुल नहीं हुंदी भी तुसी जन्म लेना है तुसी दसो किदे घर जन्म लेना है ना सानू मां चुनन की आग्या हुंदी है ना पिता चुनन की आग्या हुंदी है ना सानू खिता चुनन की भी मैं अमेरिका विच जन्म लेना है इंडिया विच लेना है ना सानू कोई उत्थे मजहब चुनन की आग्या हुंदी है ना सानू कोई बरादरी चुनन की आग्या हुंदी है ना कोई भैन भरा चाचा ताया मामा मासी असी चुन नहीं सकते पर जदों पति पत्नी की गल हुंदी है तो साढ़े कोल खुल हुंदी है भाई तू हुण वेख लै जिंदगी इहदे नाल तू बतीत करनी है इस वास्ते भाई तुसी दोवें चलो अगे तो माहौल होर सी हुण ते कई बार जिहड़े परिवारां च संस्कार हैं वह भी जदों वेख वकैया करते हैं तो ज उन्होंने जो लग जाए भी हुण गल नेड़े लग गई है तो बच्चों कहिंदे ने भी तुसी जे एक दूजे नाल कोई डिस्कस करनी है दस मिनट तो तुसी सैपरेट बैठ के भी कर सकते हो भाई जिंदगी तुसी कटनी है एक दूजे नूं कुछ पुछना है दसना है पुछ दस लवो ये साडी चोण हुंदी है ये रिश्ता इस पक्षों भी बड़ा महत्वपूर्ण है हुण सतगुरु सच्चे पातशाह गुरु नानक साहब शब्द वरत रहे ने मुंद ममे ते टिप्पी औंकड़ ते तद्दा मुंद मुंद किनू कहिंदे ने ओ नौजवान स्त्री जिहड़ी मुटियार ते हो गई है पर उहनू इस गल दी अजे खबर नहीं भी मैं जवान हो गई हाँ जिहड़ा ओ पीरियड हुंदा है जिहनू थोड़ा जिहा दूसरे पक्ष तों अलड़पुणा कह देंदे ने ओदी अपनी बात हुंदी है जदों पता लग जांदा भी मेरे विच आ गुण है उस गुण दे नाल हंकार भी आ जांदा जदों गुण दा पता ही ना होवे अपने सुहापण दा पता ही ना होवे अपनी सुंदरता दा पता ही ना होवे अपने जिहड़े सोज ने जिहड़ियां शोखियां हुंदियां ने उस वेले बच्चे विच बच्ची विच ओह शोखियां बनावटी तौर ते बनाउण दी कोशिश करिए ओह नहीं बन सकदियां हुण सतगुरु गुरु नानक साहब कहिंदे ने मुंद जोबन बालड़िए है ते तू मुंद तू तेनू अपनी सुंदरता दा अपने ऐस वेले जिहड़ी तेरी अवस्था है तेनू उहदा अहसास नहीं पर एक नुक्स है भई तू अजे बालड़ी है अजे तेरे च अजाणपुणा बहुत है अजाणपुणे विच फिर गलतियां हुंदियां ने जिवें दुनियावी तौर पर अणजाण बच्चे टीनएजर बच्चे जे किसी गलत रस्ते ते पै जाण ते उन्हां दा भारी भरकम नुकसान हुंदा है फ्यूचर खत्म हो जांदा कई वार इस तरह ऐ मुंद जोबन बालड़िए तू अपने अणजाण पुणे तो खबरदार हो तेरे कोल इक बहुत वधिया चीज है तेनू उहदा पता ही कोई नहीं गा जिवें उस अलड़ नूं अपनी सुंदरता दा अहसास नहीं हुंदा इस तरह तेनू भी एक चीज का एहसास नहीं है तेरे को बड़ी बेशकीमती वस्तु है पदार्थ है महाराज केड़ा पदार्थ है हजूर कह लगे मेरा पेर रली आला राम बड़े ध्यान नाल बेनती सुनियो क्योंकि कथा का कोई प्रयोजन नहीं है एको ही प्रयोजन है समझना ते समझाना तुसी कीर्तन सुनिया ना यह भगती है मैनू खिमा करना गल समझने लई बेनती कर रहा यह भगती नहीं है जो मैं कर रहा ये इस तरह जिवें म्यूनसिपल कारपोरेशन दे तुसी साइन बोर्ड पढ़ रहे हो उन्हूं पढ़ना है उन्हूं समझना है ते उन्हूं फॉलो करना है फिर डेस्टिनेशन ते पहुंचांगे अदरवाइज नहीं पहुंचांगे मेरा पेर रली आला राम दे अर्थ ने रली आला रली प्लस आलिया आलिया मैंने घर रलिया मैंने आनंद जेड़ा आनंद का सोम

सतगुरु मेरे अंत करण, गुरु रूप, गुरु स्वरूप, सात संगत जी, इस तरह सतगुरु सानू सारयां नू नाम दी दात बख्श के सदीव काल लई सुखां नाल भरपूर कर दें, क्योंकि जिहड़ा भी मनुख परमेश्वर दा नाम जपदा है, वाहिगुरु नू सिमरदा है, मालक नू चेते करदा है, उन्हों सतगुरु औखी घड़ी देखनी नहीं दिंदा। असल विच देई पाठ कई बार असीं कर दिंदे आ, पर देई पाठ नहीं है। देई नाल हुंदा है अरदास वाचक शब्द भी औखी घड़ी देखण ना देवी, पर इत्थे पाठ देई है, भाव इड़ी दे उपर बिंदी नहीं लगनी, औखी घड़ी ना देखण देई, देखण दिंदा ही नहीं, अपने बिरध की आप संभाल करता है। सतगुरु कदी भी औखी घड़ी नहीं देख दिंदा, पर यह है कि सतगुरु नूं याद करना साडा फर्ज है, सतगुरु का धन्यवाद करना साडा फर्ज है, सतगुरु के चरण परसने साडा फर्ज है, तो गुरु की गोद में आके सज के गुरबाणी सरवण करना भी साडा फर्ज है। तुसीं कृपा करते हो हर रोज, बहुत बेअंत संगतां उदम करके संध्या के समय से पहुँचते हो, सतगुरु के व्यवहारक चरण परसते हो, गुरु की गोद में सज के गुरु की बाणी सरवण करते हो, तो सतगुरु का बिरध है सतगुर सिख पूजन सब आवै सब गावै हर हर उत्तम बानी, गाव्या सुनिया तिन का हर थाए पावै जिन सतगुरु की आग्या सत सत करमा। तुसी गाउंदे भी हो ते नाल सुनते भी, दो काम करते हो, दोहरा फल है, डबल कृपा है सतगुरु दी। सतगुरु मेरा अंत करने इसे तरह तुहानू बल बख्शन, तुसी सतगुरु दी गुरबाणी का आनंद माणते रहो, अपने जीवन दिया घड़ियां नू सफल करते रहो, मनुखे जामे नू सवारदिया होया अपना जीवन बतीत करो, भुला चुकां दी खिमा। आओ सारे मिल के आपां आनंद साहब जी के पाठ करो। राम कली महला तीजा, आनंद एक ओंकार।

गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु।

नमः सतगुराय नमः श्री गुरुदेवाय नमः अष्टपदी सिमराओ सिमर सिमर सुख पावो काल कलेश तर माहे मिटावो सिमराओ जास विश्वंभर इका नाम जपत आगनत अनिका

जय महाभयान तप बहु काम तय हर के राम की तुम परशाम। जहा त्रिखा मन तुझ आ करखै तय नानक हर अमृत बरखै। भक्त जना की बर्तन नाम संत जना कै मन विश्राम। हर का नामदास की ओट हर के नाम दरे जन कोट। हर जस करत संदन रात हर आउ खद साधक मात। हर जन के हर नाम निधान बार ब्रह्म जन गिनो दान। मंत्र रंग रते रंग एकाय नानक जन का वृत विवेका। हर का नाम जन को मुक्त जुगत हर के नाम जन को त्रिपत भुगत। हर का नाम जन का रूप रंग हर नाम जपत का परे न भंग।

कथा अष्टपदी साधक संग मुखूजल होत साध संग मन सगली होत साधक संग मिटे अभिमान साधक संग प्रगटा सुगयान साधक संग बुझा ब्रभ नेरा साध संग सबोत नभेरा साधकाय संग पाए नाम रतन साधक संग एक उपर जतन साध की महिमा वरने कौन परानी नानक साध की शोभा ब्रह्माए समानी साधक संग अगोचर मिलाय साधक संग सदा पर फुलाय साधक संग आवे बस पंचा साध संग अमृत रस पंचा साध संग मह सबकी रेन साधक संग मनोहर बहन साधक संग न कतहुता अभय साध संग अस्तित मन पावय साधक संग माया ते भिंसा संग नानक प्रभ सु प्रसन्न साध संग दुश्मन समीत साधु का संग मापनीत साध संग किस्यो नहीं बैर साधक संग ना भिंगा बैर साधक संग ना ही गो मंदा साध संग जाने परमानंदा साधक संग ना ही हो ताप साधक संग तजे सब याप आपे जाने साध बढ़ाई नानक साध प्रभु न आई साधक संग न कबूता वह साधक संग सदा सुख बाब साध संग बस अगोचर लह साधु कै संग आ जा सहाय साधक संग बसे थान उचाय साधु कै संग महल पहुचाय साधु कै संग दृढ़ सब धर्म साधक संग केवल पार ब्रह्म साधक संग पाए नाम निधान नानक साधु कै कुर्बान साध कै संग सब कुल उदार है साध संग साजन मीत कुटम निस्तार है साधु कै संग सो धन पाव है जिस तंते सबको बरसाव है साध संग धर्म राय करे सेवा साधक संग शोभा सुर देवा साधु कै संग पा पलायन साध संग अमृत गुण गायन साधक संग सर्वधान गम नानक साधक संग सफल जन्म साधक संग नहीं कशकाल दर्शन भेड़ तो होत निहाल साधक संग कलुकत हराय साधक संग नरक पर

साधु सुन रस साधक संग सुनो हर नाम सासंग हर के गुण गाओ साधक संग ना मनते बिसराय सासंग सर पर निस्तराय साधक संग लगा ब्रह्म मीठा साधु गाय संकट का डीठा सासंग भया का गारी सासंग दही हमारी साधक संग मिटे सब रोग नानक साध मिटे संजोग।

जैसे राज रंगो लागे तुल भवान। ब्रह्म ज्ञानी का धीरज एक जो वसुधा कहू खोद कहू चंदन लेब। ब्रह्म ज्ञानी का यह गुनाह नानक जो पावक का सह स्वभाव। ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला जैसे मैला लागे जला। ब्रह्म ज्ञानी के मानो प्रगा जैसे धर प्रयागाश। ब्रह्म ज्ञानी के मित्र सतर समान। ब्रह्म ज्ञानी के नाही अभिमान। ब्रह्म ज्ञानी ऊंचते उच्चा मन अपने सबते नीचा। ब्रह्म ज्ञानी सेजन पहे नानक जिन प्रव्याप करे। ब्रह्म ज्ञानी सगल की रीना तमरस ब्रह्म ज्ञानी चीना। ब्रह्म ज्ञानी की सब पर माया ब्रह्म ज्ञानी ते कछ बुरा न पाया। ब्रह्म ज्ञानी सदा सामदर्शी ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट अमृत बरसी। ब्रह्म ज्ञानी बंधन दे मुक्ता ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल जुगता। ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान। ब्रह्म ज्ञानी एक उपरयास ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश। ब्रह्म ज्ञानी का गरीबी समाहा ब्रह्म ज्ञानी पर्व कारु माहा। ब्रह्म ज्ञानी का नाही तंधा ब्रह्म ज्ञानी ले तावत बंधा। ब्रह्म ज्ञानी का वह स्वफला ब्रह्म ज्ञानी सफल फला। ब्रह्म ज्ञानी संग सगल उदार नानक ब्रह्म ज्ञानी जपाय सगल संसार। ब्रह्म ज्ञानी का एक रंग ब्रह्म ज्ञानी का बस प्रभ संग। ब्रह्म ज्ञानी का नाम आधार ब्रह्म ज्ञानी का नाम प्रवार। ब्रह्म ज्ञानी सदा सत जागत ब्रह्म ज्ञानी अहम बुद्ध्यागत। ब्रह्म ज्ञानी का मन परमानंद ब्रह्म ज्ञानी के घर सदा आनंद। ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश। ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का बेता ब्रह्म ज्ञानी एक संहिता। ब्रह्म ज्ञानी का वया चिंत ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंद। ब्रह्म ज्ञानी जिस घर प्रभ आप ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप। ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बट भागी पाइय ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाइय। ब्रह्म ज्ञानी को खोजे में सर नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर।

और अवतार अष्टपदी। संत का दुखन आर्जा कटाय, संत का दुखन जमते नहीं छुटाए, संत का दुखन सुख सब जाए, संत का दुखन नरक में पाए, संत का दुखन मत ए मलीन, संत का दुखन शोभा ते हीन, संत के हते को रखाए ना कोय, संत का दुखन थान भ्रष्ट होए, संत कृपाल कृपा जे कर नानक, संत संग नंदक भी तराय, संत का दुखन दे मुख पवाए, संतन का दुखन काग जो लवाए, संतन का दुखन सर्व जोन पाए, संत का दुखन त्रिगत जोन करमाए, संतन के दुखन तृष्णा में जलय, संत के दुखन सबको शलय, संत के दुखन ते सब जाए, संत के दुखन नीच नीच आए, संत दुखी का था उनको नाहे, नानक संत भावे था उगत पाहे, संत का नंदक मा तताई संत।

का जो शोभा सुप्रसन्न अष्टपदे अविनाशी परम मन में राग मानु की तुम प्रीत त्याग तस्ता पर नाही किस को सर्व निरंतर एक सोए आपे बिना आपे दान गैर गंभीर गीर सुजाना पार ब्रह्म परमेश्वर गोविंद कृपा निधान दयाल बख्शंद सा तेरे की चरणी पाओ नानक है मन हन राव मनसा पूर्ण सरना जो जो कर पाया सोई होग अरन बरन जागा नेत्र भोर तिसका मंत्र ना जाने होर अंधरूप मंगल सत जाके सर्वधोग सुनिए कर ताके राज में राजोग में जोगी तब मैं तिसर ग्रस्त मैं भोगी त्याय त्याय भगत सुख पाया नानक तिस पुर का कने अंत न पाया जाकी लीला की बंदना है सगल देव हारे वगाहे पिता का जन्म के जाने पूत सगल प्रोय अपने सूत समत ज्ञान ध्यान जिंदे जनदास नाम ध्यावे से ते गुण में जागो परमाहे जन्म मरा फिर आवा जाए पूजनी तिसके असा जैसा जनावे तैसा नानक जान नाना रूप नाना जाके रंग नाना भे करे रंग नाना बिदगम बिदीनो विस्तार प्रभन्यासी अकंकार नाना जल्द करे खन माए पूरे पूर्ण सब उठाए नाना विद कर बंत बनाई अपनी कीमत आवे पाए सब गढ़ तिसके सब तिसके ठाऊ जब जब जीवे नान करनाओ नाम के धारे सगले जंद नाम के धारे खंड ब्रह्मांड नाम के धारे सिमृत वेद पुराण नाम के धारे सुनन ज्ञान ध्यान नाम के धारे आगास पाताल नाम के धारे सगल आकार नाम के धारे पुरिया सब भमन नाम के संगद्रे सुन श्रमन कर कृपा सपने नाम लाए नानक चौथे पद में सो जन गत पाए रूप सत जाका सत स्थान पुरख सत केवल प्रधान करतूत सत सत जाकी बाणी सत पुरख सा माहे समाणी सत कर्म जाकी रचना सत मूल सत सत उत्पात सत करनी निर्मल निर्मल जिसे बुझाए तसे सपरी सत नाम प्रभु का सुखदाई विश्वास सत नान गुरते पाई सत भजन साध उपदेश सत जन जागा हृदय प्रवेश सत नृत भुजे जय कोय नाम जब ताकी गत होय आप सत किया सब सत आपे जाने अपनी मित गात जिसके सठ सो करने हार वरना बूझ करत विचार करते की मितना जाने किया नानक ज्योत भावे सुवरतिया बिस्मन बिस्म भय बिस्माद जिन बुझा तस आया स्वाद प्रभ के रंग राज रहे गुर के भजन पदार्थ रहे वे दाते तू खट नहा जाके संग तरह संसार जन का सेवक सो बट भागी जन का संग एकले बलागी

की मदले बीस बीस में गुरु का मन माने सो सेवक परमेश्वर की गत जाने सो सतगुरु हृदय हर जिस हृदय हर नाऊ अनक बार गुरु को बल जाओ सर्व निधान जी का दाता आठ पैर पार ब्रह्म रंग राता ब्रह्म जन जन्मे पार ब्रह्म के आप नहीं कुछ परम सह सयान रया ना जाइये नानक ऐसा गुर बट भागी भाई है सफल दर्शन पेख तो पुनीत परसत चरण गत निर्मल रीत पिट संग्राम गुण रवे पार ब्रह्म की दरगे गवे सुनकर भजन करन आगाने मन संतु गातम पतियाने पूरा गुरु रखे जाका मंत्र अमृत दृष्ट पेखे संत।

गोचर परम निर्वाण निराहार निर्वैर सुखदाई ताकि कीमत गिने न पाए। अनक भगत बंदन करे चरण कमल हृदय सिमरे सत बिरहारी सतगुर अपने नानक जिस प्रसाद ऐसा प्रभ जपने।

पृष्ठपति जब अकारे काशना दृष्टेता पापुन तब कहते होता जब तारी अपन सुन समात बैर विरोध के संकमात जब इसका वर्ण चिहन्ना जापत हर सो कहो किसे व्यापत जब अपने आप आपार ब्रह्मता मोह कांग सोभत परमापन खे लाभ तीजा नान करने हार न दूजा जब होवत प्रभ केवल तनी तब भगत कहो किसको गनी जब एक हर आगम अपार तब नर्ग सुर कहो कौन अवतार जब निर्गुण प्रभ सह सुभाए तब शिव शगत कहाए जब आपे आप अपनी जो तर है कम तब कम ने डर कमन कत डर अपन चल तब करने हार नानक ठाकुर अगम अपार अविनाशी सुख आपन आसन तय जन मरण कहो कहा विनाशन जब पूर्ण करता प्रभ सोए तब जमकी त्रास कहो कि सोए जब अवगत अगोचर प्रभ एका तब चित्रगुप्त किस पूछत लेखा जब नाथ निरंजन अगोचर अगाधे तब गौन छुटे कौन बंधन बाधे

मानता है कौन को मान कौन अभिमान। जय स्वरूप केवल जगदीश है शाल शहर लगत कऊ कीस। जय जो स्वरूपी जो संग समावत किसे भूखम द्रवताब है। करण ग्रामन करने हार नानक करते का नाह समार। जब अपनी शोभा आपन संग बनाई तब कमन बाय बाप मित्र सुत भाई।

सनेत्यागो त्रंग संजना के दूर मन मंग आप छोड़ बेनती करो सासंग अगन सागर थरो हर तन के पर लिहो पंडार नानक गुरु पूरे नमस्कार खेम कुशल सहज आनंद सासंग भाज परमानंद।

की फतेह। एक ओंकार सतगुर प्रसाद श्री वाहे गुरु जी की फतेह। जाप श्री मुख वाक पात साही दसवीं छपै शांत वह प्रसाद चक्र चिहन।

प्रसिद्धे कृपालंग स्वरूपे कुकर्मं परनासी सदा सर्वदारिद सिद्धंग निवासी चरपट शांत वह प्रसाद अमृत कर्मे अमृत धर्मे अखल जोगे अचाल भोगे अचाल।

पूजो सदा हमारे पच्छा श्री अहतो जो करे अहो रक्षा राख लिहो मोहे राखन हारे साहिब संत सहाय प्यारे दीन बांध दुस जन के हंता तुम हो पुरी चतुर्दश कंता।

स्वयं प्रभु अवरक्षा मेरी तुम करो सिखी उबारे सिख संग्रो दुह तेजते उठवते उत्पाता सकल मलेश करो रन कहता जे आय तुह तब सरनी परे दिन के दुष्ट दुख तो आय मरे

हो बचाई। कृपा करी हम पर जग माता, ग्रंथ कर पूर्ण सुभराता, किल सकल देह को हरता, दुष्ट दुखन को क्षय करता।

सा किते संयम रह कर नह जाए संयम कर्मी सह न उपजे बिन सहजे स सन जाए नह जाए सहसा किते संयम रहे कर्म कमाए सह से जियो मलीन है कित संयम धोता जाए मन धोव शब्द लागो हर स्यो रहो चित लाए कह नान गुर प्रसादी सहज उपजे इह सहसा इम जाए जियो मैले बाहरो निर्मल जियो ता मैले तिनी जन्म जुए हारिया एह तिसना वड्डा रोग।

सेवक जन मानै प्रतख गुरु निस्तारे बाणी बिरलो विचारसी जे को गुरमुख होए ए बाणी महापुरख की निज घर वासा होए।

मन महा बड दुंधर तै मन मावासी राजा स्वाद सन्नाह टोप ममता को कबुद्ध कमान चढ़ाई तृष्णा तीर रहे घट भीतर इयों गाढ़ लियो ना जाई प्रेम पलीता सुरत हवाई गोला ज्ञान चलाया ब्रह्म अगन सहजै पर जाली एकै चोट सिझाया सत संतोख लै लरने लागा तोरे दोए दरवाजा साध संगत अर गुर की कृपा ते पकड़ेओ गढ़ को राजा भगवत पीर शकत सिमरन की कटी काल पै फांसी दास कमीर चढ़ियो गढ़ ऊपर राज लियो अबनासी सतनाम धन वाहे गुरु जी बिलावल महला पंजवा तुम समर्था कारण करन ढाकन ढाक गोबिंद गुर मेरे मोह अपराधी शरण चरण तुम समर्था का

वाहेगुरु एक ओंकार श्री वाहेगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कैन गुरु नानक लई त्याय फ्री अंगद गुरते अमरदास रामदास हुए सहाय। अर्जन हर गोबिंद नाम सिमरो श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याई है। जिस डिठे सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरिया कर नौ निध आवे ताए सब थाई होए सहाय। साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह दसवें पातशाह जी सब थाई होए सहाय। दसा पातशाहिया दी जोत धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान तरके बोलना जी। पंजां प्यारियां चौहां साहिबजादियां चालियां मुक्तियां हठियां जपियां तपियां जिन्हां नाम जपिया वंड के छकियां देख चलाई तेग वाही देख के अमृत कीता तिन्हां प्यारियां सचियारियां दी कमाई दा ध्यान तरके बोलना जी। जिन्हां सिंह सिंघणियां ने धर्म हे सीह दिते बंद बंद कटवाए खोपरिया लोहाइया चरखड़िया ते चढ़े तनारिया नाल चरवाए गुरद्वारिया दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां धर्म नहीं हारिया सिखी सिद्ध केसा सवासा संग निभाया तिना समूह शहीदां दी कमाई दा ध्यान तरके बोलना जी। पंजां तख्तां सरबत गुरद्वारिया जी का ध्यान तरके बोलना जी। प्रिथमै सरबत खालसा जी की अरदास है जी। सरबत खालसा जी को वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु चेतावै चेतावन का सदका सर्ब सुख होए जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तहां रछिया रियाज देख तेग फतेह बिरद की पैज पंथ की जीत श्री साहिब जी सहाय। खालसा जी के बोल बाले बोलना जी। सिखा नू सिखी दान केस दान रह दान विवेक दान विसाहु दान प्रसा दान दाना सिर दान नाम दान श्री अमृतसर साहिब जी दे दर्शन इशनान चौकियां झंडे बुंगे जुगो जुग अटल धर्म का जयकार होवे बोलना जी। सिखा दा मान नीवा मत उची मत पद दे राखे आप काल पुरख वाहिगुरु अपने पंथ दिसदा सहाई दतार जी ओ श्री ननकाणा साहिब समूह गुरधामा दे खुले दर्शन।

लेख पुराण भक्त ना पायो का दिया जे लिखण लेख कुराण तित वार न जोगी जाने रुत वाहो न कोई जा करता सिर ठीको साजे आपे जाने सोई किव करे आखा किव सलाही क्यों वरणी किव जाना नानक आखण सब को आखे एक दू एक से आना वड्डा साहिब वड्डी नाय कीता जा काहु वे नानक जे को आप जाना है अगे गया ना सो है पातालां पताल लखे आगासा गा सोड़ कोड़ कपाल थके वेद कैनक वात सहस उठारे कैनक ते बांसलू एक धात लेखा हुए ता लिखी लेख हुए विनास नानक वड्डा आखी आप जाने आप सलाही सलाहे ती सुरत ना पाईए नदियां ते वाह पवे समुंद ना जानिए समुंद सा सुल्तान ग्रह से ती माल धन कीड़ी तुल ना उवनी जे तिस मनो ना विसरै अंत न सिवती कहना अंत अंत न करण देना अंत अंत न वेखण सुनना अंत अंत न जापे क्या मन मंत अंत न जापे कीता आकार अंत न जापे पारा वार अंत कारण के ते बिल लाहे ताके अंत न पाए जाहे हो अंत न जाने कोय बहुता कहिए बहुता होए वड्डा साहेब ऊचा था ऊचे उपर ऊचा ना हुए बड़ी ऊचा हुए कोय ते सूचे को जाने सोए जेवड़े आप जाने आप नानक नदरी करमी दात बहुता कर्म लिखिया न जाय वड्डा दाता तिल ना तमाय किते मंगे जो दे अपार किते गणत नहीं विचार किते खप टुटे बेकार किते लै लै मुकर पाहे किते मूर्ख खाही खाहे केत्या दुख भुग सदमार एह पे दात तेरी दातार बंद खलासी पाने हो राख न सके कोय जे को खाए के आखन पायो जाने जेतिया मुखाए आपे जाने आपे दे आखे से पे के इके जिसनु बख्शे सिपत सलाह नानक पात साही पात साहू अमुल गुण अमुल व्यापार अमुल व्यापारी अमुल भंडार अमुल आवे अमुल लै जाहे अमुल पाए अमुला संवाहे अमुल धर्मे अमुल दीवान अमुल तुल अमुल परवान अमुल बख्शीस अमुल निशान अमुल कर्म अमुल फरमान अमुल अमुल आखिया न जाय आख आख रहे लिवलाय आख है वेद पाठ पुराण आख है पढ़े करे बखियान आख है भरम आख है इंद आख है गोपी तह गोविंद आख है ईश्वर आख है सिद्ध आख है केते कीते बुद्ध आख है दानव आख है देव आख है सुर नर मुर जन सेव

हर कीरत तत बिचारे गुण गावत अतुल सुख पाया ठाकर अगम अपारे जो जन पार ब्रह्म अपने कीने।

आप जपे जाप सोए, आप जपाए जपे सो नाओ, आप गुवाए सो हर गुण गाओ। प्रभ कृपा ते होए प्रगास, प्रभु दया ते कमल विगास। प्रभ सो प्रसन्न बसे मन सोए, प्रभ दया ते मति उत्तम होए। सर्वण दान प्रभ।

का सह स्वभाव ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला जैसे मैल न लागे जला ब्रह्म ज्ञानी के मन होए प्रगास जैसे धारी ऊपर आकाश ब्रह्म ज्ञानी कह मित्र सत्र समान ब्रह्म ज्ञानी कह नाही अभिमान ब्रह्म ज्ञानी उचते उच्चा मन अपने सबते नीचा ब्रह्म ज्ञानी से जन भय नानक जिन प्रव्याप करे

सगल संसार। ब्रह्म ज्ञानी कै कै रंग, ब्रह्म ज्ञानी कै बसे प्रभ सांग, ब्रह्म ज्ञानी कै नाम उधार, ब्रह्म ज्ञानी कै नाम परवार, ब्रह्म ज्ञानी सदा सत जा।

कैठे ना जाया दयाकर ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकर। ब्रह्म ज्ञानी की मित कौन बखाने, ब्रह्म ज्ञानी की गात ब्रह्म ज्ञानी जाने, ब्रह्म ज्ञानी का अंत न पार, नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार। ब्रह्म ज्ञानी सब श्रेष्ठ काम करता, ब्रह्म ज्ञानी सद जीव नहीं मरता। ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुगत जी का दाता, ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरुष विधाता, ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ, ब्रह्म ज्ञानी का

बीज मंत्र सर्व को ज्ञान चहु वरनाम जपे को नाम जो जो जपे तिस की गत हुए साध संग पावे जन कोय कर कृपा अंतरे उतारे पास प्रेत मुग्ध पाथर को तारे सर्व रोग का खुद नाम कल्याण रू मंगल गुण गाम काहू जुगत किते ना पाइये धर्म नानक तिस मिले जिस लिखिया तुर कर्म जिस कै मन पा

अत सुंदर अपार अनूप निर्मला निर्मल निर्मल तेरी बाणी कड़कड़ सुनी सरवण बुखियाणी।

तिसे त्याब सास ग्रास साब काश वर्ते तिसका किया जैसा करे तैसा को थी अपना खे लाभ करने हार दूसर कौन कह विचार जिसनु कृपा करे तिसे अपन नाम देवट भागी नानक जन से सलोक तजो सियान पसुर जन सिमरो हर हर राय एक आस हर मन रखो नानक दुख भरम पव जाष्टपदी मानो की टेक बिरथी सब जान देवन को एक है भगवान जिसके दिए रहे काय बोरना तिसना लागे आए मारे राखे को आप मानो कह किसना ही हाथ तिसका कुंभू सुख होय तिसका नाम रा कंठ परोय सिमर सिमर सिमर प्रभ सोए नानक बिघन न लागे कोय उस्तत मन में कर निरंकार कर मन मेरे सत व्यवहार निर्मल रसना अमृत पियो सदा सुहेला कर।

मित गात जिसके श्रेष्ठा सो करणे हार वरना भूत करत विचार करते की मित ना जाने किया नानक जो तिस भावे सो वरतिया बिस्मन बिस्म भय बिस्माद जिन बूझया तिस

मन में सहै आपस को कर कछ ना जनावे, हर हर नाम हृदय सद त्यावे। मन बिच है सतगुर कै पास ते सेवक कारज रास, सेवा कर तुए निकामी तिस को उत प्राप्त स्वामी। अपनी कृपा जिसे आप करे नानक सो सेवक गुर की मत ले, बीस बिस्वै गुर का मन माने सो सेवक परमेश्वर की गत जानै।

कर बचन करण आका ने मन संतोखा तुम पति आने पूरा गुर आख्यो जांका मंत्र अमृत दृढ़ पेखे हो संत गुण बेअंत कीमत नहीं पाए नानक जिस भावे तिस लय मलाए।

मन भाई बहु भोजन का प्रसंगी दरसना जपती अर अरणीता भली सुकरणी शोभा धनवंतिर दे बसे पूर्ण गुरमंता सत्संग प्रभ देव निवास सर्व सुख।

तय कौन को मान कौन अभमान। जय स्वरूप केवल जगदीश तय छल छिद्र लगत कहो की सा। जय ज्योत स्वरूपी ज्योत संग सुमावे।

जया शाल्य छेद अभे सुमाया उहां किसे व्यापत माया आपसकों आपे आदेशा तह गुण का नाही प्रवेशा जय कै केक भगवंता तह कौन अचिंत किस लागे चिंता जय अपने आप आपति आरा ते कौन कथे गुण सुनने हारा बहु बेअंतु च ते उचा नानक आपसको आपे पहुंचा जय प्रचे उपर पंच अकार तय गुण में कीनो बसथार पापुन ते भई कहावत को नरक को सुर्ग वंशावत

संघ रचना जिन जाता जिसकी रहत सात बचन साधु सब कहत जो जो है सोई सुख माने करन करावन हार प्रभ जाने अंतर बसे बार पियो ही नानक दर्शन देख सब मोही आप साध किया सब सात तिस प्राप्ति सगली उत्पात तिस भावे ता करे बिस्थार तिस भावे ता एक ओंकारन कला लखी न जाय जिस भावे तिस लय जिस भावे तिस लय मिलाय कवन निगट कवन कहिए दूर आपे आपा भरपूर अंतर गाज से आप जनाए नानक ते जने आप जाए सरभूत आवर तारा सर्ब नैन आप पेखन हारा

लाख खुशियां पातशाहियां जे सतगुर नदर करे निमख एक हर नाम दे मेरा मन तन शीतल होए जिस

0: तन संचो हो वो भगवंत
1: संत जना का निर्मल मंत्र
0: एक आस राखो मन माहे
1: सर्व रोग नानक मिट जाए
0: जिस तन को चार को

0: जय निर्मल पोरक पोरक पाते होता,
1: जय बिन मैल कहां के तोता,
0: जय निरंजन निरंकार निर्वाण,
1: मैं कौन कौन माल कौन निर्वाण,
0: जय स्वरूप केवल जगदीश,
1: जय शाल शीतल जगत को कीस,
0: जय जो स्वरूपी ज्योत संग संभावे,
1: जय किसे फूक कौ चरतावे,
0: करण करावण करने हार,
1: नानक करते का नहीं समार,
0: जब अपनी शोभा अपन संग बनाई,
1: कमल माई बाप मित्र शुद्ध पाई,
0: जय सर्व कला आपे परवीन,
1: जय एक देव का को चीन,
0: जब अपने आप आप और धार है,
1: सगल सगल का विचार,
0: जय अपने उज अपने आप।

0: राष्ट्रपति संत संग अंतर प्रभ डिठा
1: नाम प्रभु का लगा मीठा
0: सगल समग्री एक कट माहे
1: अनेक रंग नाना दृष्टा है
0: नौंड दे अमृत प्रभ का नाम
1: गई में इसका विश्राम
0: सुन समाध

0: सब लोए
1: सबके उच्च पाए स्थान
0: भरण होवे अमल जान
1: हर तन खाट चले जन सोए
0: नानक जिसे प्राप्त होए
1: खेम शांत रिद्ध नाम।

0: अबरक्षा मेरी तुम करो
1: सिख उबार सिख करो
0: दुष्ट जिते उठवट उत्पाता
1: सकल कलेश के अवरण करता
0: जे अस्तुतव सरनी परे
1: इनके दुष्ट दुख है मरे
0: पुरख जमन पग परे।

फांसे कौआ फिर पछताना अब क्या हुआ फाथा चोग चुगे नहीं बूझे सतगुर मिले त आखी सूझे ज्यो मछली फाथी जम जाल बिन गुरदाते मुक्त ना पाल फिर आवे फिर जाए एक रंग रचे रहे लिवलाए इब छूटे फिर फास ना पाए बीरा बीरा कर रही बीर पै बैराए बीर चले कर अपने बहन बरहे बिरह जल जाए बाबल के कर बेटड़ी बाली बाले नेहे जे लोड़े वर कामणी सतगुर से वैते बिरलो ज्ञानी बुझणो सतगुर साच मिले ठाकुर हाथ वड़ाइया जय पावे तै दे बाणी बिरलो विचार सी जे को गुरमुख होए एह बाणी महापुरख की निज घर वासा होए पन पन कड़िए कड़ कड़ भजे टाहे उसारे उसरे टाहे सर पर सोखे पी पर पुखे समरथ वे परवाहे परम पुलाने पह दीवाने बिन पागा क्या पाइये गुरमुख ज्ञान डोरी प्रभ पकड़ी जिन खिंचे तिन जाइये हर गुण गाए सदा रंग राते बहुड़ न पछोताइय पब्बे पाले गुरमुख बूझे ता निज कर वासा पाइय पब्बे पौजल मार्ग विखड़ा आस निरासा तरिय गुर प्रसादी आपो चीने जीव त्या इव मरिय माया

त्रै गुण वरतारा ब्रह्मा विष्णु महेश उपायन हुकम कमावन काराउ पंडित पढ़दे जोत की ना बुझे विचारा सब किच तेरा खेल है सच सिरजन हारा जिस पावे तिस बख्स लै सच शब्द समाई। श्लोक महला तीजा मन का झूठा झूठ कमावे माया नो फिरे तपास दावे परमे पूला सब तीरथ गह ओ तपा कैसे परम गत लहै।

पौड़ी, रात दिन सु उपायन संसार की वर्तन, गुरमति कट चानना अनेर विनाशन, हुक्मे ही सब साजियन रविया सब बण तृण, सब किच आपे आप है गुरमुख सदा हर पण, शब्दे ही सोजी पई सच्चा आप बुझाई, श्लोक महला तीजा, अभ्यागत एह न आखियन जिनके चित मह परमा, तिस दै दित

विसंतर तात सुद होए त्यों हर का पौ दुर्मत मैल गवाए। नानक ते जन सोहणे जो रत्ते हर रंग लाए। राम कलही महला तीजा राम कलही राम मन वसया ता बन्हिया सिंगार। गुर के शब्द कमल विगसया ता सौंपया भगत पंडार। भरम गया ता जागया चूका अग्ञान अंधार। तिसनो रूप अत अगला जिस हर नाल प्यार। सदा रवह पिर अपना सोबा वंती नार। मनमुख सिंगार न जाननी जासन जन्म सवहार। बिन हर भगती सिंगार करे नित जमै होए खुआर। से सारे बिच सोभना पायनी अगे है जे करे सो जाने करतार। नानक सच्चा एक है

सच्चे शब्द समाहे पौड़ी आप अलिप्त सदा रहै होर तंदै सब तावहे आप निहचल अचल है होर आवहे जावहे सदा सदा हर त्याई गुरमुख सुख पावे निज कर वासा पाइए सच सिफत समावे सच्चा गहर गंभीर है गुर शब्द बुझा।

आपे आखण आपे जान महला पहला हिंदू के कर हिंदू आवे सूत जनेऊ पढ़ कल पावे सूत पाए करे बुरे आई नाता तोता थाए न पाई मुसलमान करे बड़े आई बिन गुर पीरे को थाए न पाई राहुद साए उथे को जाए करनी वाजो पिसत न पाए जोगी के कर जुगत दसाई तित कारण कन मुंदरा पाई मुंदरा पाए फिरे संसार जिथे किथे सिरजन हार।

भिखिया भोजन करै संताप। औ हठ पट्टण मैं भिखिया करै सौ औतुती शिवपुर चढ़ै। भूलै गोरख सत स्वरूपा परम तंत मैं रेख न रूपा। महला पहला सो उदासी जे पाले उदास अर्द उर्द करे निरंजन वास। चंद सूरज की पाए गंडा तिस उदासी।

बाहर मूल ना खोजिए कर माहे विदाता मन मुख हर मंदर की सार न जाननी तिन्नी।

नानक जो तिस भावै सो करे जो दे सो सहणा महला पहला। नानक आखे रे मना सुनिए सिख सही लेखा रब मंगेसिया बैठा कड वही। तलवा पौसन आकिया बाकी जिन्ना रही अजराइल फरेस्ता होसी आए तई आवण जानना सुजई पीड़ी गली फही। कूड़न खुट्टे नानका ओड़क सच रही पौड़ी हर का।

रोवै पंड पै मजूर जिनके स्वामी रहत हदूर रोवै जनमेजा खोए खोए गया एकी कारण पापी पया रोवै सेख मसायक पीर अंतकाल मत लागे पीड़ रोवै राजे कन पड़ाए कर कर मागे भीख्या जाए रोवै है किरपन संच है तन जाए पंडित रोवै ज्ञान गवाए बाली रोवे नाहे पतार नानक दुखिया सब संसार मन्ने नाओ सोई जन जाए और ही कर्म न लेख लाए महला दूजा जप तप सब किछ मनिए अवर कारा सब बाद नानक मन्या मनिए बुझे गुर प्रसाद पौड़ी काया हंस तुर मेल करते खेल लिख करते लिख पाया सब मैं गुप्त परत दा गुरमुख प्रगटाया गुण गावे गुण उचरे गुण महे समाया सच्ची बाणी सच है सच मेल मिलाया सब किछ आपे आप है आपे दे वड़ियाई सलोक महला दूजा नानक अंधा होए के रतना परखण जाए रतना सार न जानी आपे आप लखाए महला दूजा रतना केरी गुथली रतनी खोली आए वखर तै बन जा रिया दोहां रही समाए जिन गुण पल्ले नानका माणक बण जैसे रतना सार न जाननी अंधे वतह लोए पौड़ी नौ दरवाजे काया कोट है दसवें गुप्त रखी जय वज्र कपाट न खुलनी गुर शब्द खुली जय अनहद वाजे धुन वज दे गुर शब्द सुनी जय तित कट अंतर चानना कर भगत मिली जय सब मैं एको वरतदा जिन आपे रचन रचाई श्लोक महला दूजा अंधे कह राह दसिए अंधा होए सुजाए होए सजाखा नानका सो क्यों उजड़ पाए अंधे एहन आखियन जिन मुख लोयन नाहे अंधे से ही नानका खसमों कुथे जाहे महला दूजा साहेब अंधा जो किया करे सजाखा होए जेहा जाने ते हो वरते जे सो आखे कोए जिथे सुवस्त न जा पई आपे वर्तन जा वरतों जान नानक गाहक क्यों लै सके न वस्त पछाण महला दूजा स्यों क्यों सो क्यों अंधा आखिए जे हुक्मो अंधा होए नानक हुक्म न बुझई अंधा कहिए सोए पौड़ी काया अंदर गढ़ कोट है सब निरद संतर वा देसा आपे ताड़ी लाइन सब मैं परवेसा आपे श्रेष्ठ साजियन आप गुप्त रखेसा गुरसेवा ते जानिया सच प्रगटिए सा सब किछ सचो सच है गुर सोजी पाई श्लोक महला पहला सावन रात आहाड़ देहो काम क्रोध दोए खेत लब वरत द्रोग बियो हाली राहक हेत हल विचार विकार मन हुक्मी खट्टे खाए नानक लेख है मंगिए औत जनेंदा जाए महला पहला पाओ पोए पत पवित पानी सत संतोख बलेद हल हलेमी हाली चित चेता व्रत भक्त संजोग नौ बीज बख्शीस मोहल दुनिया सगल दरोग नानक नदरी कर्म होए जावे सगल विजोग पौड़ी मन मुख मोह गुबार है दूजे पाए बोले दूजे पाए सदा दुख है नित नीर वरोले गुरमुख नाम ते आइए मथ का तत् कढोले अंतर पर गास कट चानना हर लद्दा टोले आपे परम पलायन दा किछ कहन जाई श्लोक महला दूजा नानक चिंता मत करो चिंता तिस ही है जल में जंतो पाए तिना पिरो जी दे उथे हट न चले ना को किरस करे सौदा मूल न हो वही ना को लय न दे जिया का आहार जी खाना एहो करे विचो पाए सायरा तिना पेसार करे नानक चिंता मत करो चिंता तिस ही है महला पहला नानक एहो जियो मछली चीवर तृष्णा काल मनुआंद न चेती पड़े चिंता जाल नानक चित अचेत है चिंता बद्दा जाए नदर करे जे अपनी ता आपे लै मिलाए पौड़ी से जन साचे सदा सदा जिन्नी हर रस पीता गुरमुख सच्चा मन वसे सच सौदा कीता सब किछ कर ही माहे है बड़ भागी लीता अंतर तृष्णा मर गई हर गुण गवी गाविता आपे मेल मिलायन आपे दे बुझाई श्लोक महला पहला वेल पंजाया कत बुनाया कुट कट कुट कर खुंब चढ़ाया लोहा वड्डे दर्जी पाड़े सूई तागा सीवे यों पत पाटी सिफती सीपे नानक जीवत जीवे यो होए प्राणा कपड़ पाटे सूई तागा गंडे महापख केहो चले नाही घड़ी महत किछ हंडे

सीता कदे ना पाटै नानक साहेब सचो सचा तिचर जापी जापै महला पहला सच की काती सच सब सार काड़त तिसकी अपर अपार सबदे सण रखाई लाए गुर की ठेकै बिच समाए तिसका कुठा होवे सेख लोहू लब निकथा वेख होए हलाल लगे हक जाए नानक दार दीदार समाए महला पहला कमर कटारा बंकुड़ा बंके का असवार गर्भ न की जय नानका मत सिर आवे पहार पौड़ी सो सत संगत शब्द मिले जो गुरमुख चले सच ध्यान से सचे जिन हर घर धन पल्ले भगत सोहन गुण गाम दे गुरमत अचल रतन विचार मन वसिया गुर के शा